0: कर रहे हैं। हमें इनका पूरा पोटेंशियल रियलाइज करने के लिए रोड मैप बनाना चाहिए। आपके यहां न्यू टस्कन जैसे मेगा प्रोजेक्ट्स पर काम हो रहा है। भारत में हमने गुजरात में गिफ्ट सिटी बनाई है। हमें आपके यहां से डेलीगेशन का स्वागत करने में खुशी होगी जो बेस्ट प्रैक्टिसेस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को स्टडी कर सकते हैं। एक्सलेंसी माय ब्रदर, हमारे भव्य स्वागत और आपके मित्रता भरे शब्दों के लिए मैं आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। विशेष रूप से कल भोजन पर आपने जो मुझे अनुभव कराए, एक एक चीज में आप पर्सनली इन्वॉल्व रहे हैं, इसके लिए मैं आपको विशेष रूप से आपका आभार व्यक्त करता हूं। स्वादिष्ट खाने के साथ साथ मुझे टैलेंटेड बच्चों का गाना और डांस भी देखने को मिला। ऐसा लग रहा था आपने जैसे हिंदुस्तानी खड़ा कर दिया हो। ऐसा लग रहा था आपने मेरा गुजरात ही फिर से यहां एक बार जागृत कर दिया हो। इतना ही नहीं, आपने पूरे शहर को भारत के तिरंगे झंडे के रंगों से रंग दिया। ये भी दिल को छूने वाला था। यह सब दिखाता है कि आप भारत को अपने हृदय के कितना करीब रखते हैं। दो दिन बाद आपके इंडिपेंडेंस डे की 35th एनिवर्सरी है। मैं इस अवसर पर आपको और उज्बेकिस्तान के सभी लोगों को अग्रिम बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। सुखद संयोग से हम इस वर्ष अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की 15th एनिवर्सरी भी मना रहे हैं।
1: Prime Minister Modi, in fact, participated in a yoga session organized by the Yoga Federation of Uzbekistan in Tashkent and walked around the venue and interacted with the participants as the group performed yoga. He also, in fact, posed for a video with the participants at the end of the very session.
2: Namaste.
3: Namaste.
2: आप लोगों ने बहुत बढ़िया योगा करके दिखाया आज, और सभी उम्र के लोग हैं यहाँ। मैं मेरे मित्र राष्ट्रपति जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने उज्बेकिस्तान को योगा से जोड़ दिया है। बहुत बहुत बधाई। थैंक यू।
1: The Prime Minister also paid homage to former Prime Minister Lal Bahadur Shastri at Shastri Memorial. He remembered a towering statesman whose unwavering commitment to the nation continues to inspire generations. These are the visuals that we were bringing to you earlier, and this visual that we are bringing to you on your screens right now is of a planting ceremony that we see the Prime Minister took part in alongside the President of Uzbekistan. In fact, the theme that got highlighted here clearly was of the fact that both nations are to work towards a more sustainable, ecologically sustainable future when we speak of the world that we are headed towards. So yes, this was, and we've seen how the Prime Minister has oftentimes very passionately come out to talking about tree ceremonies. He's participated in the same within the country as well. So yes, this comes in as another extension of goodwill between the two countries, the relationship that's shared, which goes much beyond just the ties that have to do with different sectors of development. The people-to-people connect is also established through such ceremonies that are participated in together. And as we were mentioning about the homage that the Prime Minister paid to our former Prime Minister Lal Bahadur Shastri at the Shastri Memorial in Tashkent itself, these are the visuals that we were speaking to you about. Take a look how he remembered the towering statesman whose unwavering commitment to the nation continues to inspire generations. These are the visuals of the Prime Minister visiting the very Shastri Memorial as well earlier in the day.

0: Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com.
1: You are watching India Today.
2: Mr. Modi has landed in Kyrgyzstan after his visit to Uzbekistan. Earlier, Prime Minister Modi held delegation-level talks with the President, Shavkat Mirziyoyev. And during these talks, India and Uzbekistan signed key MOUs, which included a long-term uranium supply arrangement, which is expected to help keep India's nuclear power plants on track for the long haul. Now, Prime Minister Modi said that India and Uzbekistan will elevate ties to a strategic partnership. He's also stressed on arrangements for the long-term supply of uranium. Amid the meeting, it was also decided that both nations will be establishing a coordination council at level of foreign ministers to provide direction to all aspects of India-Uzbekistan ties. Now, during the visit, Prime Minister Modi was also conferred upon the Oli Darajli Dostalik Order in Tashkent, which is the highest honor in Uzbekistan. Now, Prime Minister Modi is in Kyrgyzstan for the SCO summit, where he will be meeting the Russian president on Monday.
3: ये बुक देखिए आपकी, जिसमें आपने हमारी द्विपक्षीय इकोनॉमिक पार्टनरशिप को आगे बढ़ाने के लिए सभी महत्वपूर्ण सेक्टर में प्रोजेक्ट्स की पहचान कर आगे की टाइमलाइन तय की है। मैं इस प्रयास की सराहना करता हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि हम साथ मिलकर हम इस पर शीघ्र ही प्रगति करेंगे। ब्रदर, कल रात्रि भोज पर हमारी अच्छी चर्चा हुई। हमने कई महत्वपूर्ण डिसीजन भी लिए। हमारी टीमें भी सेम पेज पर हैं। इसके लिए मैं उन सभी निर्णयों का उल्लेख करना चाहूंगा। हम विदेश मंत्रियों के स्तर पर कोऑर्डिनेशन काउंसिल का गठन करेंगे, जो सहयोग के सभी पहलुओं को करीबी समन्वय से दिशा देगी। हम हमारे ज्वाइंट कमीशन के स्तर को सेक्रेटरी लेवल से बढ़ाते हुए मिनिस्टर लेवल पर लेकर जाएंगे। हम विदेश मंत्रियों के स्तर पर कोऑर्डिनेशन काउंसिल का गठन करेंगे, जो सहयोग के सभी पहलुओं को करीबी समन्वय से दिशा देगी। हम हमारे ज्वाइंट कमीशन के स्तर को सेक्रेटरी लेवल से बढ़ाते हुए मिनिस्टर लेवल पर लेकर जाएंगे। दोनों पक्ष मिलकर एक बिजनेस समिट का आयोजन करेंगे, जिसमें दोनों देशों के बिजनेस लीडर्स शामिल हो। यूरेनियम की सप्लाई के लिए दोनों पक्ष लॉन्ग टर्म व्यवस्था बनाएंगे। आज हम तीन सिस्टर सिटी और सिस्टर स्टेट अरेंजमेंट कर रहे हैं। हमें इनका पूरा पोटेंशियल रियलाइज करने के लिए रोड मैप बनाना चाहिए। आपके यहाँ न्यू टस्केंट जैसे मेगा प्रोजेक्ट्स पर काम हो रहा है। भारत में हमने गुजरात में गिफ्ट सिटी बनाई है। हमें आपके यहाँ से डेलीगेशन का स्वागत करने में खुशी होगी, जो बेस्ट प्रैक्टिसेस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को स्टडी कर सकते हैं। एक्सलेंसी माय ब्रदर, हमारे भव्य स्वागत और आपके मित्रता भरे शब्दों के लिए मैं आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। विशेष रूप से कल

0: समय रैना हो या अन्य कोई कलाकार हो, हमने अतीत में भी देखा, वर्तमान में भी देख रहे हैं कि षड्यंत्र के तहत जानबूझ करके पब्लिसिटी पाने के लिए ये किसी को टारगेट करते हैं। क्या कारण है आप कश्मीरी पंडितों का मजाक उड़ाओगे, बिहारी भाइयों का मजाक उड़ाओगे? ये सोच समझ करके पब्लिसिटी स्टंट है। और ये कहानी का अंत होता है कि माफी मांग करके द एंड, और उसके बीच में इतनी पब्लिसिटी जुटा लेते हैं कि आगे की दुकानदारी इनकी अपने आप चलती हो, फिल्म हो, सीरियल हो, या कोई कॉमेडियन समय रैना जैसा कोई कलाकार हो।
1: नहीं, अपने देश के किसी भी नागरिक पर कोई भी अभद्र टिप्पणी बर्दाश्त से बाहर है, और जो लोग भी ये टिप्पणी करते हैं वो देश को तोड़ने की बात करते हैं। हम लोग अखंड भारत का सपना देखने वाले लोग हैं, और हमारे लिए राजा और रंक दोनों बराबर है, और जाति और पंथ के आधार पे देश में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, ये भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मानना है।
2: Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com.

0: are watching India Today.
1: Minister Modi has landed in Kyrgyzstan after his visit to Uzbekistan. Earlier, Prime Minister Modi held delegation-level talks with the President, Shavkat Mirziyoyev. And during these talks, India and Uzbekistan signed key MOUs, which included a long-term uranium supply arrangement, which is expected to help keep India's nuclear power plants on track for the long haul. Now, Prime Minister Modi said that India and Uzbekistan will elevate ties to a strategic partnership. He's also stressed on arrangements for the long-term supply of uranium. Amid the meeting, it was also decided that both nations will be establishing a coordination council at level of foreign ministers to provide direction to all aspects of India-Uzbekistan ties. Now, during the visit, Prime Minister Modi was also conferred upon the Oli Darajli Dostalik Order in Tashkent, which is the highest honour in Uzbekistan. Now, Prime Minister Modi is in Kyrgyzstan for the SCO summit, where he will be meeting the Russian president on Monday.
2: ये बुक देखिए आपकी, जिसमें आपने हमारी द्विपक्षीय इकोनॉमिक पार्टनरशिप को आगे बढ़ाने के लिए सभी महत्वपूर्ण सेक्टर में प्रोजेक्ट्स की पहचान कर आगे की टाइमलाइन तय की है। मैं इस प्रयास की सराहना करता हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि हम साथ मिलकर हम इस पर शीघ्र ही प्रगति करेंगे। ब्रदर, कल रात्रि भोज पर हमारी अच्छी चर्चा हुई। हमने कई महत्वपूर्ण डिसीजन भी लिए। हमारी टीमें भी सेम पेज पर हैं। इसके लिए मैं उन सभी निर्णयों का उल्लेख करना चाहूंगा। हम विदेश मंत्रियों के स्तर पर कोऑर्डिनेशन काउंसिल का गठन करेंगे, जो सहयोग के सभी पहलुओं को करीबी समन्वय से दिशा देगी। हम हमारे ज्वाइंट कमीशन के स्तर को सेक्रेटरी लेवल से बढ़ाते हुए मिनिस्टर लेवल पर लेकर जाएंगे। हम विदेश मंत्रियों के स्तर पर कोऑर्डिनेशन काउंसिल का गठन करेंगे, जो सहयोग के सभी पहलुओं को करीबी समन्वय से दिशा देगी। हम हमारे ज्वाइंट कमीशन के स्तर को सेक्रेटरी लेवल से बढ़ाते हुए मिनिस्टर लेवल पर लेकर जाएंगे। दोनों पक्ष मिलकर एक बिजनेस समिट का आयोजन करेंगे, जिसमें दोनों देशों के बिजनेस लीडर्स शामिल हो। यूरेनियम की सप्लाई के लिए दोनों पक्ष लॉन्ग टर्म व्यवस्था बनाएंगे। आज हम तीन सिस्टर सिटी और सिस्टर स्टेट अरेंजमेंट्स कर रहे हैं। हमें इनका पूरा पोटेंशियल रियलाइज करने के लिए रोड मैप बनाना चाहिए। आपके यहाँ न्यू टैस्केंट जैसे मेगा प्रोजेक्ट्स पर काम हो रहा है। भारत में हमने गुजरात में गिफ्ट सिटी बनाई है। हमें आपके यहाँ से डेलीगेशन का स्वागत करने में खुशी होगी, जो बेस्ट प्रैक्टिसेस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को स्टडी कर सकते हैं। एक्सलेंसी माय ब्रदर, हमारे भव्य स्वागत और आपके मित्रता भरे शब्दों के लिए मैं आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। विशेष रूप से कल भोजन पर आपने जो मुझे अनुभव कराए, एक एक चीज में आप पर्सनली इन्वॉल्व रहे हैं, इसके लिए मैं आपको विशेष रूप से आपका आभार व्यक्त करता हूं। स्वादिष्ट खाने के साथ साथ मुझे टैलेंटेड बच्चों का गाना और डांस भी देखने को मिला। ऐसा लग रहा था आपने जैसे हिंदुस्तानी खड़ा कर दिया हो। ऐसा लग रहा था आपने मेरा गुजरात ही फिर से यहाँ एक बार जागृत कर दिया हो। इतना ही नहीं, आपने पूरे शहर को भारत के तिरंगे झंडे के रंगों से रंग दिया। ये भी दिल को छूने वाला था। यह सब दिखाता है कि आप भारत को अपने हृदय के कितना करीब रखते हैं। दो दिन बाद आपके इंडिपेंडेंस डे की 35th एनिवर्सरी है। मैं इस अवसर पर आपको और उज्बेकिस्तान के सभी लोगों को अग्रिम बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। सुखद संयोग से हम इस वर्ष अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की 15th एनिवर्सरी भी मना रहे हैं।
1: Prime Minister Modi, in fact, participated in a yoga session organized by the Yoga Federation of Uzbekistan in Tashkent and walked around the venue and interacted with the participants as the group performed yoga. He also, in fact, posed for a video with the participants at the end of the very session.
3: Namaste.
4: लोगों ने बहुत बढ़िया योगा करके दिखाया आज और सभी उम्र के लोग हैं यहाँ. मैं मेरे मित्र राष्ट्रपति जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने उज्बेकिस्तान को योगा से जोड़ दिया है. बहुत बहुत बधाई. Thank you.
1: The Prime Minister also paid homage to former Prime Minister Lal Bahadur Shastri at Shastri Memorial. He remembered a towering statesman whose unwavering commitment to the nation continues to inspire generations. These are the visuals that we were bringing to you earlier. And this visual that we are bringing to you on your screens right now is of a planting ceremony that we see the Prime Minister took part in alongside the President of Uzbekistan. In fact, the theme that got highlighted here clearly was of the fact that both nations are to work towards a more sustainable, ecologically sustainable future when we speak of the world that we are headed towards. So yes, this was, and we've seen how the Prime Minister has oftentimes very passionately come out to talking about tree ceremonies. He's participated in the same within the country as well. So yes, this comes in as another extension of goodwill between the two countries, the relationship that's shared, which goes much beyond just the ties that have to do with different sectors of development. The people-to-people connect is also established through such ceremonies that are participated in together. And as we were mentioning about the homage that the Prime Minister paid to our former Prime Minister Lal Bahadur Shastri at the Shastri Memorial in Tashkent itself, these are the visuals that we were speaking to you about. Take a look how he remembered the towering statesman whose unwavering commitment to the nation continues to inspire generations. These are the visuals of the Prime Minister visiting the very Shastri Memorial as well earlier in the day.

0: by singer Ankit Balyan, which talks about, which also talks about gun violence. And now my colleague Santosh Sharma is joining us with more details on the latest development. Santosh, is pure encounter ki aur jankari dijiye. Aisa kya kuch hua jisme jo do shooters the unko UPSTF ne maar giraya?
1: देखिए दोनों ही शूटर्स जब इनके सीसीटीवी आए उसके बाद से यूपीएससीएफ की दोनों टीमों को लगाया गया नोएडा और मेरठ यूनिट को और उसी के कड़ी में पड़ताल की गई और इन दोनों की शिनाख्त हुई सुमित और मोहित के तौर पर और जिनको यूपीएससीएफ और शामली पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में शामली के शहर कोतवाली में कैराना रोड के पास एनकाउंटर में मार गिराया गया। तो टोटल चार शूटर्स इन्वॉल्व थे इसमें, दो बाइक से चार शूटर्स आए थे जिसमें सुमित और मोहित का नाम है, सोनीपत के रहने वाले हैं, हरियाणा के रहने वाले तो शूटर्स इन्वॉल्व किए गए थे जिसमें सोनीपत के सुमित और मोहित थे। इन दोनों को यूपीएससीएफ ने एनकाउंटर में मार गिराया। दो शूटर्स और इसके अलावा दो मददगार जो रेकी करने में थे जो इनकी मदद कर रहे थे, यानी कि अभी टोटल चार लोगों की गिरफ्तारी होना बाकी है। लेकिन सबसे बड़ी कार्रवाई की गई यूपीएससीएफ के द्वारा महज चार दिन के अंदर, 26 अगस्त को ये हत्याकांड हुआ हरियाणवी सिंगर अंकित बालियान की, देर शाम में हत्या कर दी गई। तो उसके बाद आज 31 चार दिन के अंदर यूपी पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन में यूपीएससीएफ और शामली पुलिस के साथ इस एनकाउंटर, इस हत्याकांड को अंजाम देने वाले दो बदमाशों का एनकाउंटर किया है, दोनों को मार गिराया है। और इसके बाद अब कहा जा रहा है कि इसकी कड़ियां धीरे धीरे खुलती नजर आ रही हैं। चार शूटर थे लेकिन इनकी मदद कौन कर रहा था, रेकी किसने की थी, ये भी पुलिस को पता चल चुका है, यूपीएससीएफ को पता चल चुका है। इसमें दो अन्य लोग, चारों शूटर के अलावा दो अन्य लोगों के नाम भी पता चल चुके हैं। टोटल छह लोगों के इन्वॉल्वमेंट की बात सामने आई है।
2: वो लोग तत्काल अपनी गाड़ी को दाहिनी मोड़ लिए, इस एरिया में मोड़ लिए, यहाँ पे आपने देखा यहाँ डेड एंड है।
0: All right, my colleague Santosh Sharma continues to stay with us. Santosh, क्या वजह रही है, क्या मकसद था अंकित बालियान को मारने के पीछे, क्या ये भी अभी तक सामने आया है?
1: देखिए अंकित बालियान के हत्या के पीछे भोलू साहपुरिया जो इस वक्त कनाडा के टोरंटो में बैठा हुआ है उसने हत्याकांड की जिम्मेदारी ली और अभी तक जो तफ्तीश है वो इसी ओर इशारा कर रही है कि ये हत्याकांड भोलू साहपुरिया के इशारे पर इन भाड़े के हथियारों ने किया है। और इस हत्याकांड को करवाने की जो वजह थी वो अंकित बालियान के जो जितेंद्र सिंह गोगी जो मई 2021 में कोर्ट के अंदर हत्या की गई थी, जितेंद्र सिंह गोगी की टिल्लू ताजपुरिया गैंग वॉर में हत्या हुई कोर्ट के अंदर, उसके बाद बनाए गए गाने को लेकर के अंकित बालियान से नाराजगी थी और उसी के बाद अंकित बालियान की हत्या की गई और जिसकी जिम्मेदारी भोलू साहपुरिया ने सोशल मीडिया पर भेज दी। लेकिन हालांकि इसके बाद तमाम अन्य लोगों ने भी कहा कि मैंने मारा, लेकिन जो पुलिस की तफ्तीश है वो इसी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के भोलू साहपुरिया की तरफ की गई और उसके बाद ये चार शूटर्स आइडेंटिफाई हुए जिनमें से दो का पुलिस ने एनकाउंटर किया है। अभी जो दो अन्य शूटर्स और दो उनके मददगार हैं उनकी गिरफ्तारी होना बाकी है। उनसे जब पूछताछ, आज ये दो शूटर्स को एनकाउंटर में मार गिराया गया तो पुलिस को पूछताछ का मौका नहीं मिला, लेकिन बाकी के जो चार शूटर्स हैं जो दो अन्य इसमें शामिल हैं उनकी पूछताछ के बाद और भी कड़ियां जुड़ेंगी। जी
0: जी संतोष हमारे साथ बने रहिए। लेट्स वंस अगेन लिसन इनटू वन ऑफ द सॉन्ग्स दैट वाज वन ऑफ द मोस्ट वायरल सॉन्ग्स ऑफ द सिंगर हरियाणवी सिंगर अंकित बालियान व्हिच प्रमोट्स गन वायलेंस अपेरेंटली।
3: छोड़ दिए रोड़े ओला काम हो जागा,
4: थोड़े दिन रुक शहर जाम हो जागा।

0: Two of the shooters out of the four have been shot dead in an encounter, and we're now being joined by Ankit Balyan's family. His wife Seema Balyan and sister Reena Balyan are now joining us on the broadcast. Seema ji, main aapse puchna chahungi, aap jo nyay hai uska uski mang kar rahi thi, encounter ki mang kar rahe the. Ab char mein se jo do shooters hain unko maar giraya gaya hai encounter mein, aap kya kehna chahenge, kya aapko lagta hai ki nyay ki shuruaat ho chuki hai?
1: मैम, बिल्कुल लगता है कि न्याय की शुरुआत हो चुकी है. और जैसे कि पुलिस प्रशासन ने आश्वासन दिया था कि वो लोग अच्छे से कार्रवाई कर रहे हैं केस पे, तो कहीं ना कहीं एक उम्मीद बंधी है कि न्याय की शुरुआत हो चुकी है. और मैं माननीय मुख्यमंत्री योगी जी का बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगी कि उन्होंने इस केस को बहुत ही गंभीरता से लिया है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर पे क्वेश्चन उठ गया था. जैसे सिटी के बीच में अंकित जी पे 20 फायर हुआ था, लेकिन जैसे ही उन्होंने इस केस को बहुत गंभीरता से लिया है और उनकी जो एक प्रॉपर कार्यशैली है उसी में जवाब देते हुए दिखा दिया है कि क्यों वो सबसे अलग सीएम है. तो अपने प्रदेश के सीएम पे मुझे पूरा भरोसा है कि वो इस चीज को जड़ से खत्म कर सकते हैं, क्योंकि उनका उनका कहना ही यही है कि माफियों को मिट्टी में मिलाने का काम करते हैं. तो मेरी पूरी उम्मीद उनसे बंधी, इस तरह दो लोगों का एनकाउंटर हुआ है, पूरे के पूरे गिरोह का पर्दाफाश किया जाए, पूरा इंसाफ मिले हम लोगों को.
0: जी सीमा जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगी, क्या अंकित जी की जो बहन है वो भी फ्रेम में आ सकती है थोड़ा सा साइड होके? मैं उनसे भी बात करना चाहूंगी, रीना जी से. रीना जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, क्या पहले कभी किसी तरह की धमकी मिली अंकित बालियान को? क्योंकि इसमें जो है गैंग वॉर का एंगल सामने आ रहा है, गोगी गैंग का हाथ सामने आ रहा है. क्या पहले कभी इस तरह की कोई धमकी या मारपीट हुई अंकित के साथ?
1: नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा
0: जी. और
1: वो सीधा सा बच्चा के साथ अच्छे से रहता, गांव से बाहर कहीं भी कुछ भी हो, मैं बहुत ही शांत प्रिय था. मेरा भाई तो इतना अच्छा था, मैं बयान नहीं कर सकती इसके बारे में. आप मैं नहीं, मतलब गांव में कहीं भी जाके आप इस चीज को पता कर सकते हो, किसी से भी बात कर सकते हो, मेरे घर के अलावा भी किसी से कोई लड़ाई झगड़ा मैं कुछ भी नहीं था
0: जी. और क्या उनके साथ कोई बॉडीगार्ड्स रहते थे, क्या कोई सिक्योरिटी वो रखते थे अपनी प्रोटेक्शन के लिए?
1: नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं था. मैम, जब ऐसा था ही नहीं कि ऐसा भी हो सकता है. मैम, अगर कुछ पता हो तो बंदा ऐसा सोचेगा कि मुझे जरूरत है, लेकिन मैम ऐसा कुछ था ही नहीं.
0: जी, मैं सीमा जी से भी बात करना चाहूंगी. सीमा जी, क्या आपको कभी उन्होंने इस बारे में बताया हो कि किसी से उनकी अनबन हुई है या किसी से उनको धमकी मिल रही है या किसी तरह की परेशानी हो जो आखिर के कुछ दिनों में उन्होंने आपके साथ शेयर की हो?
1: मैम, मेरी उनसे हर टॉपिक पे बात होती थी और हम लोग बहुत पति पत्नी का जो रिश्ता होता है सब लोग शेयर करते हैं अपनी छोटी छोटी बातें. मैं उनके बहुत क्लोज थी. उन्होंने कभी भी उनके किसी भाव से भी मुझे नहीं लगा कि उनकी जान पे कुछ खतरा है या उन्हें किसी से धमकी मिल रही है. देखो, बहुत ही मामूली से परिवार से हम बिलोंग करते हैं, कोई एक्सट्रोशन वाला तो मामला हो नहीं सकता, क्योंकि हम लोग इतने आर्थिक रूप से इतने तो वो नहीं है कि एक्सट्रोशन वगैरह की मांग हम पूरी कर पाए, तो वो सवाल तो नहीं उठता. दूसरी बात, धमकी हमें कभी भी नहीं मिली. अगर धमकी मिलती हमें, हम कुछ तो करते अपने परिवार के इंसान को बचाने के लिए, कुछ ना कुछ तो हम करते. धमकी वाला भी कोई एंगल नहीं था. इवन जिस दिन उन पे फायर हुआ है, मेरी उनसे बात हुई है, वो जिम कर रहे थे, कार्डियो कर रहे थे जिम में, और जिम करते करते मुझसे बात कर रहे थे, तब भी वो बहुत खुश लग रहे थे और अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट की बातें मुझसे कर रहे थे. तो अगर उनको अपनी जान पे होता, इंसान ऐसे कुछ कैसे हो सकता? कुछ तो चिंता उसके व्यवहार में झलक जाती ना. हमें जरा सी भी चिंता उनके व्यवहार में बिल्कुल भी नहीं जलती कि कुछ भी ऐसा है.
0: जी सीमा जी, और 26 अगस्त को एग्जैक्टली क्या हुआ शाम को 7:45 बजे? कैसे आप लोगों को पता लगा कि अंकित बालियान पे हमला हुआ है?
1: मैम, जिम में जाते थे 4 बजे के अराउंड, तो जिम करके वो लगभग 6:15 के अराउंड बाहर निकले हैं. और वो जिम का जो बैग होता है वो बैग साइड में रख, जो उनको गोलियां चलाने वाले लोग आए थे, गाड़ी एक साइड पे खड़ी थी, वो एक तरफ रोड चल रहा था, तो वो उन्होंने प्रॉपर खड़े होके वहां पे वेट किया कि वो उस तरफ जाए जहां से वो पीछे से बात कर पाए और देख भी ना पाए अंकित जी, उनके

0: सर में गोलियां लगी हुई थी, मैं उनको पीछे से मारा गया है, धोखे से मारा गया है, और बहुत भीड़ी गाड़ी के और जो दीवार बनी हुई थी उसके बीच में वो खड़े थे, भागने की भी जगह नहीं थी, और पीछे से गोलियां मारी है। अगर सामने से मारते सर, 6 फीट 2 इंच का आदमी था वो 2 4 का तो ऐसे ही थप्पड़ थप्पड़ में इधर उधर गिरा देता, क्योंकि इतना समर्पित था वो, 10 सालों से जिम कर रहे थे, तो
1: सीमा जी,
0: बहुत ही
1: एक
0: धोखा हुआ है
1: एक एक
0: उनके
1: चीज
0: साथ।
1: और सामने आ रही है। उनका एक गाना था, भरी कोट में गोली मारूंगा, उस पे भी कई सवाल उठाए जा रहे हैं। उसका कुछ कनेक्शन निकाला जा रहा है, गोगी जो गैंगस्टर था उससे। क्या इसके ऊपर कभी पहले कोई विवाद देखने को मिला है इस गाने के ऊपर?
0: मैम ऐसा कोई भी विवाद नहीं था, आप बात बताइए, मूवी इतनी बनती है, ये सब काल्पनिक चीजें होती है, कोई इंसान ऐसे सोच भी कैसे सकता है कि कोई काल्पनिक चीज को लेके किसी की हत्या कर दी जाए। संजय दत्त साहब ने इतने सालों पहले खलनायक गाना गाया था, उसके बाद से गुंडागर्दी वाली इतनी मूवी बनी है, हरियाणा में अभी भी गुंडागर्दी के इतने ज्यादा गाने चल रहे हैं, क्या हर गाने का मतलब वही होता है? ये सब काल्पनिक चीजें हैं, काल्पनिक चीज को लेके कोई इतना बड़ा डिसीजन कैसे ले सकता है कि किसी की जान ले ली जाए? ये काल्पनिक गाना सिर्फ ये मूवी है जो ये काल्पनिक चीजें ही तो है, ये सच में
1: जी
0: ऐसा थोड़ी मुमकिन हो सकता है।
1: सीमा जी, दो शूटर्स को मार गिराया गया है, पर दो शूटर्स अभी भी बाहर हैं। क्या आपके परिवार को इस समय असुरक्षित महसूस हो रहा है? क्या आपकी आगे क्या मांग होगी?
0: मैम थोड़ा सा असुरक्षित तो देखो लगना जायज है, हम लोगों को असुरक्षित लगेगा क्योंकि जैसा सुनने में आया है गाड़ी में भी जीपीएस लगा हुआ था, और गाड़ी हमारे पूरा जहां जहां पे जान पहचान, उनकी बहनों के घर भी, हमारे घर भी, हर जगह गाड़ी गई है उनकी, तो कहीं ना कहीं हमारी लोकेशन या कहीं ना कहीं हम उनकी पहुंच में तो है, देखो वो सब चीजों से वाकिफ है, तो थोड़ा सा असुरक्षित तो लगना तय है क्योंकि हमने अपने परिवार के एक इंसान को खो दिया है, तो थोड़ा सा डर तो लगना तय है।
1: जी, और क्या आपको लगता है कि ये जो एनकाउंटर हुआ वो सही हुआ, या फिर कोर्ट में जाके इंसाफ मिलना चाहिए था?
0: मैम एक बात बताइए, अगर कोर्ट में जाके भी इंसाफ करते हो, बेल मिल जाती, वो बेल मिलने के बाद हम सबके फेस रिवील हो चुके हैं, कुछ असामाजिक तत्व होते हैं मैम, उनका समाज से कटना जरूरी हो जाता है, जब शरीर का कोई हिस्सा गल जाता है, सड़ जाता है, तो उसका कटना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, अगर बेल मिलने के बाद वो हम सबकी जान पे बनाता तो उस बात का क्या, हमारी जान को तो खतरा है ना, अभी भी खतरा है कि दो लोग बाहर घूम रहे हैं, हो सकता है वो कल को गोली लेके हमारे घर के पास आ जाए, तो हम लोग क्या करेंगे? हम तो सब सीधे साधे ग्रामीण परिवेश से जुड़े हुए लोग हैं, हम कैसे मुकाबला कर पाएंगे उन लोगों का?
1: जी सीमा जी, अंकित बालियान के जो पिताजी हैं उन्होंने भी इस एनकाउंटर पे बोला है कि आधा न्याय हमें मिला है, आधा अभी भी बाकी है। और उन्होंने योगी आदित्यनाथ जी को भी शुक्रिया अदा किया है और ये भी बोला है कि अभी काम पूरा नहीं हुआ है। आप क्या कहना चाहेंगी?
0: मैं भी यही कहना चाहूंगी जो हमारे पिताजी ने बोला है कि काम की शुरुआत हो चुकी है और शुरुआत बहुत अच्छे से हुई है, माननीय मुख्यमंत्री जी से यही अपील है कि इस काम को पूरा करके एकदम लीजिएगा, क्योंकि गुंडागर्दी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, और कल किसी और के परिवार का बच्चा भी जा सकता है, तो कल ये दुर्घटना किसी और के साथ ना हो, तो आज इस चीज का खत्म हो जाना बहुत ज्यादा जरूरी है।
1: जी सीमा जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारी पूरी संवेदनाएं हैं आपके साथ और पूरे बालियान परिवार के साथ, और हम आशा करेंगे कि आपको जल्द से जल्द न्याय मिले।
2: जी।

0: यू सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।

0: एक्टिव सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।

0: EU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।

0: करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
1: सोच बदलो और बैंक भी।

0: करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
1: सोच बदलो और बैंक भी।

0: EU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।

0: सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।

0: करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
1: सोच बदलो और बैंक भी।

0: This is Pollution Ka Solution, India Today Group's campaign to find India's answer to vehicular pollution. And you've responded. We're thrilled to report that we've received over 1,000 ideas from across the country. Our expert jury is now going through every single one of them, looking for solutions that could make a real difference. If you've got a solution for pollution, India Today is looking for you. Scan the QR code on your screens or log on to indiatoday.in/pollutionkasolution and send us your idea. The QR code is up on your screens. On Pollution Ka Solution today, we bring you one such innovation. A Delhi-based innovator has developed a device called Polren, which he describes as a complete solution to vehicular pollution. He claims that when mounted on DTC buses in Delhi, this device can actually reduce particulate matter and greenhouse gas emissions. He's also claimed that this device can capture non-exhaust vehicle pollution, including particles generated when tires rub against the road. So can this device really help tackle one of Delhi's biggest pollution challenges? Here's a glimpse.
1: I'm an innovator. My 16th avishkar hai. My 16th hai, 16th invention hai. Aur pichle तकरीबन 14-15 साल से मैं एयर पोल्यूशन के ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ. दिल्ली की आबादी रोज बढ़ती जा रही है. 18 लीटर को एक आदमी CO2 ही रिलीज कर देता है इतनी आबादी में. इसलिए बहुत सारी चीज ऐसी, और एयर पोल्यूशन कोई बहुत छोटी सी चीज नहीं है कि आपने खूब मारी और वो खत्म हो जाएगा. एक डिवाइस बनाई मैं पॉलरेड के नाम से. टाइटल इसका रखा हमने प्रोडक्ट नेम पॉलरेड, पॉल्यूशन रिडक्शन डिवाइस. वैसे इसका पूरा नाम है मल्टीपर्पज एयर पोल्यूशन एंड हीट रिड्यूसर डिवाइस. इसमें बात क्या है कि जो पार्टिकुलेट मैटर वो किसी भी किस्म का हो, चाहे मड हो, सॉइल आई मीन मट्टी है, धूल है, राख है, या सिगरेट के बॉट्स है, या कोई चीज बाहर सड़क पे हमने फेंकी है, मेटल पार्टिकल्स हैं, या जो हमारे व्हीकल्स पे और चलते हैं, कुछ वो नमकीन वगैरह खाते हैं उसके पैकेट फेंक देते हैं, ये नहीं करना चाहिए. वो सारा रब होता है सड़क पर और फिर उसके पार्टिकल बन के हवा में मिल जाते हैं. ये सारे पार्टिकल जो रोड पर है, रोड डस्ट में है, और अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ तो कहीं कहीं गोबर भी आ जाता है सड़क पर, जिस तरीके से हमारे जानवर भी है. ये सबका जो ये पार्टिकल्स का पूरा एक मजमुआ है, इकट्ठा हो गया, ये बंच बन गया. वो डिवाइस चलते चलते ऑटोमेटिकली बस इसमें सक कर रही है. जब हमारी बसें चलती हैं या कारें या मोटरसाइकिलें तो टायर घिसते हैं. आपको हैरत होगी कि दिल्ली दिल्ली में 1,00,000 किलो रोज टायर घिसकर हवा में मिल जाता है. 1,00,000 kg. इस रिसर्च के बाद ही इसके डिवाइस के मैंने फिल्टर उसी हिसाब से डेवलप किए हम लोगों ने मिलकर. जो पार्टिकल्स डिवाइस ने अरेस्ट किए हैं, अब तक मेरी नॉलेज में जितनी भी डिवाइसेज हैं मैंने देखी और स्टडी किया है, उसमें जो भी फिल्टर है, जब उसका फिल्टर चोक हो जाता है तो आप उसको बाहर फेंकते हैं या उसको झाड़ कर हम उसको धोकर यूज कर लेते. उसको ख्याल में रखा तो जो भी पार्टिकल एनवायरमेंट से डिवाइस ने कैप्चर किया वो वापस कभी एनवायरमेंट में नहीं जा सकता, नॉट इवन गैसेस. तो यहाँ ये ब्लोवर में पाइप है जहां से ये सक करेगा, एयर को कर रहा है. और इस साइड में अगर आप दिखा सके कैमरे से, देखिए बहुत छोटी सी मोटर है, यहाँ से दिखाई देगी. इस बस में यहाँ से पानी डाला जाता है ताकि जो पार्टिकल इकट्ठे हो जाएं ऊपर से, वो यहाँ पर सब इकट्ठे हो जाएं यहाँ पर आके. ये वो जो आपको गंध इसमें कीचड़ दिख रही है, ये सारे पार्टिकल्स हैं जिसमें धूल मट्टी राख, जूते जो लोगों के घिसे हैं सड़क पर, जो टायर घिस रहा है, जो ब्रेक शू घिस रहे हैं, वो ये सारी गंदगी निकल कर इसमें आ रही है. आप ये देख रहे हैं जो हवा आ रही है, ये इंस्टेंटली हम अपने पैसेंजर्स को बिल्कुल क्लीन एयर दे रहे हैं. मुझे सांस लेना भी अच्छा लग रहा है इस हवा में. ये बाहर हुक से हवा ले रहा है और क्लीन करके दे रहा है, और पार्टिकल्स ये स्किन में हैं जो आपने अभी देखे. ये सब जो ब्लैक कलर है, ये सारा टायर, ये पार्टिकल जो हैं ये पॉलीमर पार्टिकल्स हैं, और ये तकरीबन 10 से 12 लीटर पानी कीचड़ अंदर से निकला है. इसमें यहाँ से लेके और यहाँ तक कई लेयर्स हैं फिल्टर्स की, अलग अलग जगह पर. यहाँ से यहाँ तक 7 जगह फिल्टर होता है. एक आखिरी फिल्टर, ये सारे पार्टिकल्स नीचे पानी में कीचड़ में चले जाते हैं, उसके बाद भी अगर कोई धुआं, जिसका धुआं का तो धब्बा आएगा, पार्टिकल तो नहीं है, अगर वो है भी तो उसको हमने ये कि डिवाइस को खोलना ही ना पड़े. ये बिल्कुल नट बोल्ट एक सिस्टम बना, और इसमें ये आप फिल्टर देख रहे हैं, अब ये 2 जून को डिवाइस लगी थी, आज 27 अगस्त है, तो पूरा जून जुलाई अगस्त 3 महीने बाद भी ये फिल्टर की पोजीशन है कि इस पर कोई डस्ट पार्टिकल ज्यादा दिखना। ये देखिए, मैं से भी कर रहा हूँ, आपको दिखेगा नहीं, ये सिर्फ जो सड़क का धुआं था उसका हल्का सा काला धब्बा है। तो अभी अगर कभी हमें करना भी पड़ता है 2 महीने या 3 महीने में या मंथली, तो हम सिर्फ हमें ये इसका फिल्टर चेंज करना होगा, वो भी अंदर वाला ये फिल्टर, ये बॉडी ऐसी रहेगी। हम अपने पैसेंजर्स को अप्रोक्सीमेटली 3,000 to 4,000 3,000 से 4,000 लीटर पर मिनट क्लीन एयर दे रहे हैं। अगर एक बस दिन में 12 घंटे चलती है सिर्फ एक बस, तो मोर देन 2 मिलियन लीटर एयर जो है वो साफ कर रहे हैं दिल्ली की और फिर पब्लिक को दे रहे हैं, और पार्टिकल और गैसेस को डिवाइस से कैप्चर कर रहे हैं। तो अगर हमारे यहाँ 10,000 या 12,000 या 8,000 या 10,000 मान लीजिए 10,000 बसें हैं, तो 2 मिलियन to 3 मिलियन लीटर अगर एक बस हवा को साफ कर रही है, तो आप सोचिए कितनी बड़ा एरिया हवा का से साफ हो सकता है। क्योंकि ये दिल्ली का पॉल्यूशन खत्म करना बहुत जरूरी है, ये है हमारा दिल्ली के लिए सॉल्यूशन फॉर पॉल्यूशन।

0: Our top focus, the Haldwani Shuddhikaran Rao, has now escalated into a political and a legal face-off. An FIR has been registered against Rahul Gandhi after he demanded action against those who conducted the purification ritual at the venue of Mallikarjun Kharge's rally. The Congress had questioned on Saturday. Rahul Gandhi had held a press conference alleging selective action and asked why no FIRs were registered against the organizers. The BJP, meanwhile, has accused Rahul Gandhi of using Kharge's Dalit identity for political gain. Here's the detailed report from
1: Mere speech hone ke baad BJP ke log sab milke awam karke us stage ka shuddhikaran karne ka
2: to hum chahte hain jaldi se jaldi in vyaktiyon ke khilaf FIR darj kiya.
3: One FIR demanded, another FIR registered. And suddenly, the Haldwani Shuddhikaran Rao has turned into a full-blown political showdown. The controversy began in Haldwani. Congress President Mallikarjun Kharge addressed a party rally at Ramlila Maidan on August 8. 3 days later, a right-wing group conducted a Shuddhikaran Yagya at the venue, claiming objectionable slogans had been raised during the rally. Days later, Rahul Gandhi raked the issue again. He demanded an FIR against those responsible, calling the purification ritual another form of untouchability.
2: Hindustan ke pradhan mantri hain, unke party ka chief keh raha hai ki shuddhikaran theek hua. Unke logo ne shuddhikaran kiya, RSS ke logo ne shuddhikaran kiya hai. To hum chahte hain jaldi se jaldi प्रधानमंत्री ऑर्डर दें कि इन व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर एससीएससी एक्ट में एफआईआर दर्ज किया जाए.
3: But within 24 hours, the tables turned. An FIR was registered against Rahul Gandhi following a complaint by those who performed the ritual.
4: एक खुद मैं एक दलित हूं और राहुल गांधी जी के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि इनके ऊपर मुकदमा करो, कार्रवाई करो. तो खुद एक हम दलित है, हमारे संग दलित समाज के और भी भाई लोग थे वहाँ. ऐसा है कि हम चाहते हैं कि राहुल गांधी जी के ऊपर यहाँ से हम FIR हो, हम उनके ऊपर खुद मुकदमा करें. दलित समाज से और हमें गिरफ्तारी के लिए हमारे ऊपर ही दबाव बना रहे.
3: Three key provisions are now at the center of the case. Bhartiya Nyay Sanhita 196, alleged promotion of enmity between two groups. Bhartiya Nyay Sanhita 299, alleged deliberate acts intended to outrage religious feelings. And provisions of the SCST Act were alleged social humiliation and insult of Dalits. The Congress has hit back, asking why no FIR has been filed against those who held the Shuddhikaran and accused the BJP of practicing the politics of polarization.
5: समाज में बंटवारा कौन कर रहा है? ये भाजपा और आरएसएस की विचारधारा है जो बंटवारा कर रही है, और यही इनका मकसद था जो इन्होंने अपने कुछ लोगों को भेजकर वहां पर सो कॉल्ड शुद्धिकरण करके. मतलब क्या था इनका? अगर राजनीतिक मतलब नहीं था तो क्या था, ये बता दें.
3: In Haldwani, Congress workers even confronted police over the alleged delay in acting on their complaint. The BJP, meanwhile, accused Rahul of using Kharge's Dalit identity for political gains.
6: खड़गे जी भी लगता है राहुल जी के प्रेशर में आकर के सदन में अपने मानहानि का अपमान का विषय उठाया. नड्डा जी ने संज्ञान लिया, जवाब दिया कि अगर ऐसी बातें होगी. भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता नहीं था.
3: सर, द इशू हैड ऑलरेडी इरप्टेड इन पार्लियामेंट ड्यूरिंग द मॉनसून सेशन.
1: स्पीच होने के बाद कल वो लोग बीजेपी के लोग सब मिलके हवन करके उस स्टेज का शुद्धिकरण करने का काम किए.

0: एडुकेटिव सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।
3: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.

0: EU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।
3: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the cola

0: EU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।
3: Bison panel, one board, infinite users.

0: As we look at these images, before we move forward on the special broadcast, I want you to listen in to Prime Minister Narendra Modi before I bring in our reporters on the big impact and that big message. Listen in to Prime Minister Narendra Modi.
1: Excellency, my friend, आपसे मिलकर मुझे बहुत ही खुशी हो रही है. पिछले वर्ष आपकी भारत यात्रा बहुत ही सफल रही और बहुत ही यादगार रही. हमने कई घंटे साथ बिताए और विशेष रूप से बिजनेस फोरम और एक प्रकार से बिजनेस वर्ल्ड का रशिया का हूज हू कहे उन सब को लेकर के आप आए और आर्थिक संबंधों को एक नई ऊंचाई और ज्यादा विस्तार देने का काम भी हमारी चर्चा में हुआ. और मुझे खुशी है कि जो आउटकम निकले हैं उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमारी दोनों टीमें पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है और बड़ी गति के साथ काम कर रही है. ये हमारे लिए गहरे संतोष का विषय है कि हमारा सहयोग निरंतर नई ऊंचाइयों को और बढ़ रहा है और दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए हम मिलकर के काम कर रहे हैं. राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखते हुए आगे बढ़ना यही हम दोनों की सोच रही है और आगे भी यही हमारा मूल मंत्र होगा. एक्सलेंसी, यूक्रेन के विषय पर हम हमेशा चर्चा करते रहे हैं. पिछली बार भी जब हम मिले थे तब आपने विस्तार से सभी विषयों के बारे में मुझे अवगत किया था. जैसा कि आप जानते हैं, भारत शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करता है और शांति के हर प्रयास के लिए आगे भी समर्थन करता रहेगा. युद्ध में बिताया एक एक दिन मानवता को पीछे धकेलता है और शांति की तरफ बढ़ाया एक एक कदम पूरी मानवता को नई आशा से भर देती है, उमंग से भर देती है. हमें एंडलेस वॉर से एंड ऑफ वॉर उसी दिशा में जाना ही होगा जो मानवता की भलाई के लिए भी बहुत आवश्यक है. जल्द से जल्द सभी विषयों का शांतिपूर्ण ढंग से समाधान हो यही मानवता की पुकार है, यही भारत का संदेश है. गांधी की धरती का, बुद्ध की धरती का एक ही संदेश है, शांति का मार्ग. आज इन सभी विषयों पर आपसे चर्चा करने का अवसर मिलेगा. कुछ दिनों बाद भारत ब्रिक्स समिट का आयोजन कर रहा है. सभी भारतवासी भारत में आपका और आपके डेलीगेशन का स्वागत करने के लिए बहुत ही उत्सुक हैं. आपकी यात्रा से हमारे द्विपक्षीय संबंधों को भी बल मिलेगा और ब्रिक्स के अंतर्गत संवाद और सहयोग भी सशक्त होगा. धन्यवाद. स्पासिबा.
0: Very significant points made by Prime Minister Narendra Modi. It's time to move from endless wars to end of war. I want to bring in India Today's Foreign Affairs Editor Geeta Mohan, my colleague Pranay Upadhyay, and India Today Group Business Editor joining us. Siddharth Zarabi also joins us on this broadcast. Geeta, significant message, a war that's been on from February 2022. Now it's almost September 2026. The Prime Minister says time to move to end of war. Geeta, you're on mute.
2: Apologies, Gaurav. Not the first time Prime Minister Narendra Modi has been reiterating India's position. This is a country statement that has been made and was made first time at the G20 in Indonesia, following which we've seen numerous number of times that that the Prime Minister spoke of wars and the fact that diplomacy negotiations are the only way forward. We do know that Prime Minister Modi, not just at this on this occasion, at various other occasions, has been emphasizing on the fact that countries should go back to the negotiating table, whether it's President Putin or, for that matter, President Pezeshkian, with Iran and the U.S. conflict impacting India very, very seriously, and not just India, but also global economy. Over here also, the message is very clear. It's not sustainable. It is not one which is worth the cost that the global economy is paying. And therefore, the message, again, emphatically clear that India wants wars to end and to stop. But this is, again, a historical and strategic relationship.

0: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
1: एयू करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम। एयू
2: सोच बदलो और बैंक भी।
3: एवरी स्टोरी फाइंड्स अ प्लेस, एवरी वॉइस गेट्स अ प्लेटफॉर्म, एवरी साइड हैज इट्स से, योर चैनल फॉर एवरी हेडलाइन। प्राइम टीम ऑन इंडिया टुडे, इंडियाज ओनली डेमोक्रेटिक न्यूज रूम।

हम विदेश मंत्रियों के स्तर पर कोऑर्डिनेशन काउंसिल का गठन करेंगे जो सहयोग के सभी पहलुओं को करीबी समन्वय से दिशा देगी। हम हमारे ज्वाइंट कमीशन के स्तर को सेक्रेटरी लेवल से बढ़ाते हुए मिनिस्टर लेवल पर लेकर जाएंगे। दोनों पक्ष मिलकर एक बिजनेस समिट का आयोजन करेंगे जिसमें दोनों देशों के बिजनेस लीडर्स शामिल हो। यूरेनियम की सप्लाई के लिए दोनों पक्ष लॉन्ग टर्म व्यवस्था बनाएंगे। आज हम तीन सिस्टर सिटी और सिस्टर स्टेट अरेंजमेंट्स कर रहे हैं। हमें इनका पूरा पोटेंशियल रियलाइज करने के लिए रोड मैप बनाना चाहिए। आपके यहां न्यू टस्कन जैसे मेगा प्रोजेक्ट्स पर काम हो रहा है। भारत में हमने गुजरात में गिफ्ट सिटी बनाई है। हमें आपके यहां से डेलीगेशन का स्वागत करने में खुशी होगी जो बेस्ट प्रैक्टिसेस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को स्टडी कर सकते हैं।

0: उन्होंने खंडन किया था, माननीय नड्डा जी ने एज ए लीडर ऑफ दी राज्यसभा वो खंडन किया था राहुल गांधी जी को, जब मल्लिकार्जुन खड़गे साहब इसके बारे में बहुत दुख व्यक्त किया, अभी उनको याद आ गया है। लेकिन इसमें बीजेपी कार्यकर्ता का कोई लेना देना नहीं है। ये स्पष्ट है कि उधर जो हुआ है हमको कोई इसका संबंध नहीं है, कोई इसका ताल्लुका नहीं है, फिर भी राहुल गांधी ये ड्रामा करते रहते हैं।
1: आपने शुद्धिकरण किस काम का किया था भाई? क्या शुद्ध कर रहे थे आप? आपको खड़गे जी का चरण रखने से, खड़गे जी के कदम रखने से आपको वहां अशुद्धि दिखाई दे रही थी, तो आप शुद्ध करने चल दिए थे। तो क्या सवाल उठा दिया राहुल गांधी ने? और क्या बोल रहे थे आपके प्रदेश अध्यक्ष हैं? क्या बोला आपके प्रदेश अध्यक्ष ने? पार्लियामेंट में खड़े होके खड़गे जी ने अपने बारे में साथ जो कुछ हुआ उस व्यवहार को बताया। नड्डा जी ने उस पर माफी भी मांगी कि अगर ये ऐसा हुआ, लेकिन FIR नहीं कराई। FIR क्यों नहीं कराई आपने? और ये इतने दम्भ में ना रहो, अजर और अमर नहीं हो गए हो? कल को सब इलाज हो जाएगा तुम्हारा भी। कभी गलत फहमी में हो गए तुम ही परमानेंट रहने वाले हो।
2: Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com.

0: As we look at these images, before we move forward on the special broadcast, I want you to listen in to Prime Minister Narendra Modi before I bring in our reporters on the big impact and that big message. Listen in to Prime Minister Narendra Modi.
1: Excellency, my friend, आपसे मिलकर मुझे बहुत ही खुशी हो रही है। पिछले वर्ष आपकी भारत यात्रा बहुत ही सफल रही और बहुत ही यादगार रही। हमने कई घंटे साथ बिताए और विशेष रूप से बिजनेस फोरम और एक प्रकार से बिजनेस वर्ल्ड का रशिया का हूज हू कहे उन सब को लेकर के आप आए और आर्थिक संबंधों को एक नई ऊंचाई और ज्यादा विस्तार देने का काम भी हमारी चर्चा में हुआ और मुझे खुशी है कि जो आउटकम निकले हैं उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमारी दोनों टीमें पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही हैं और बड़ी गति के साथ काम कर रही हैं। ये हमारे लिए गहरे संतोष का विषय है कि हमारा सहयोग निरंतर नई ऊंचाइयों को और बढ़ रहा है और दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए हम मिलकर के काम कर रहे हैं। राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखते हुए आगे बढ़ना यही हम दोनों की सोच रही है और आगे भी यही हमारा

0: मूल मंत्र होगा। एक्सलेंसी, यूक्रेन के विषय पर हम हमेशा चर्चा करते रहे हैं। पिछली बार भी जब हम मिले थे तब आपने विस्तार से सभी विषयों के बारे में मुझे अवगत किया था। जैसा कि आप जानते हैं, भारत शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करता है और शांति के हर प्रयास के लिए आगे भी समर्थन करता रहेगा। युद्ध में बिताया एक एक दिन मानवता को पीछे धकेलता है और शांति की तरफ बढ़ाया एक एक कदम पूरी मानवता को नई आशा से भर देती है, उमंग से भर देती है। हमें एंडलेस वॉर से एंड ऑफ वॉर, उसी दिशा में जाना ही होगा जो मानवता की भलाई के लिए भी बहुत आवश्यक है। जल्द से जल्द सभी विषयों का शांतिपूर्ण ढंग से समाधान हो, यही मानवता की पुकार है, यही भारत का संदेश है। गांधी की धरती का, बुद्ध की धरती का एक ही संदेश है, शांति का मार्ग। आज इन सभी विषयों पर आपसे चर्चा करने का अवसर मिलेगा। कुछ दिनों बाद भारत ब्रिक्स समिट का आयोजन कर रहा है। सभी भारतवासी, भारत में आपका और आपके डेलीगेशन का स्वागत करने के लिए बहुत ही उत्सुक हैं। आपकी यात्रा से हमारे द्विपक्षीय संबंधों को भी बल मिलेगा और ब्रिक्स के अंतर्गत संवाद और सहयोग भी सशक्त होगा। धन्यवाद। स्पासिबा।
1: Very significant points made by Prime Minister Narendra Modi. It's time to move from endless wars to end of war. I want to bring in India Today's Foreign Affairs Editor Geeta Mohan, my colleague Pranay Upadhyay, and India Today Group Business Editor joining us. Siddharth Zarabi also joins us on this broadcast. Geeta, significant message, a war that's been on from February 2022. Now it's almost September 2020.

0: As we look at these images, before we move forward on the special broadcast, I want you to listen in to Prime Minister Narendra Modi before I bring in our reporters on the big impact and that big message. Listen in to Prime Minister Narendra Modi.
1: Excellency, my friend, आपसे मिलकर मुझे बहुत ही खुशी हो रही है. पिछले वर्ष आपकी भारत यात्रा बहुत ही सफल रही और बहुत ही यादगार रही. हमने कई घंटे साथ बिताए और विशेष रूप से बिजनेस फोरम और एक प्रकार से बिजनेस वर्ल्ड का रशिया का हुज हु कहे उन सबको लेकर के आप आए और आर्थिक संबंधों को एक नई ऊंचाई और ज्यादा विस्तार देने का काम भी हमारी चर्चा में हुआ. और मुझे खुशी है कि जो आउटकम निकले हैं उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमारी दोनों टीमें पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही हैं और बड़ी गति के साथ काम कर रही हैं. ये हमारे लिए गहरे संतोष का विषय है कि हमारा सहयोग निरंतर नई ऊंचाइयों को और बढ़ रहा है और दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए हम मिलकर के काम कर रहे हैं. राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखते हुए आगे बढ़ना यही हम दोनों की सोच रही है और आगे भी यही हमारा मूल मंत्र होगा. एक्सलेंसी, यूक्रेन के विषय पर हम हमेशा चर्चा करते रहे हैं. पिछली बार भी जब हम मिले थे तब आपने विस्तार से सभी विषयों के बारे में मुझे अवगत किया था. जैसा कि आप जानते हैं, भारत शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करता है और शांति के हर प्रयास के लिए आगे भी समर्थन करता रहेगा. युद्ध में बिताया एक एक दिन मानवता को पीछे धकेलता है और शांति की तरफ बढ़ाया एक एक कदम पूरी मानवता को नई आशा से भर देती है, उमंग से भर देती है. हमें एंडलेस वॉर से एंड ऑफ वॉर उसी दिशा में जाना ही होगा जो मानवता की भलाई के लिए भी बहुत आवश्यक है. जल्द से जल्द सभी विषयों का शांतिपूर्ण ढंग से समाधान हो यही मानवता की पुकार है, यही भारत का संदेश है. गांधी की धरती का, बुद्ध की धरती का एक ही संदेश है, शांति का मार्ग. आज इन सभी विषयों पर आपसे चर्चा करने का अवसर मिलेगा. कुछ दिनों बाद भारत ब्रिक्स समिट का आयोजन कर रहा है. सभी भारतवासी भारत में आपका और आपके डेलीगेशन का स्वागत करने के लिए बहुत ही उत्सुक हैं. आपकी यात्रा से हमारे द्विपक्षीय संबंधों को भी बल मिलेगा और ब्रिक्स के अंतर्गत संवाद और सहयोग भी सशक्त होगा. धन्यवाद. स्पासिबा.
0: Very significant points made by Prime Minister Narendra Modi. It's time to move from endless wars to end of war. I want to bring in India Today's Foreign Affairs Editor Geeta Mohan, my colleague Pranay Upadhyay, and India Today Group Business Editor joining us. Siddharth Zarabi also joins us on this broadcast. Geeta, significant message, a war that's been on from February 2022. Now it's almost September 2026. The Prime Minister says time to move to end of war. Geeta, you're on mute.
2: Apologies, Gaurav. Not the first time Prime Minister Narendra Modi has been reiterating India's position. This is a country statement that has been made and was made first time at the G20 in Indonesia, following which we've seen numerous number of times that that the Prime Minister spoke of wars and the fact that diplomacy negotiations are the only way forward. We do know that Prime Minister Modi, not just on this occasion, at various other occasions, has been emphasizing on the fact that countries should go back to the negotiating table, whether it's

0: As we look at these images, before we move forward on the special broadcast, I want you to listen in to Prime Minister Narendra Modi before I bring in our reporters on the big impact and that big message. Listen in to Prime Minister Narendra Modi.
1: Excellency, my friend, आपसे मिलकर मुझे बहुत ही खुशी हो रही है. पिछले वर्ष आपकी भारत यात्रा बहुत ही सफल रही और बहुत ही यादगार रही. हमने कई घंटे साथ बिताए और विशेष रूप से बिजनेस फोरम और एक प्रकार से बिजनेस वर्ल्ड का रशिया का हुज हो कहे उन सब को लेकर के आप आए और आर्थिक संबंधों को एक नई ऊंचाई और ज्यादा विस्तार देने का काम भी हमारी चर्चा में हुआ. और मुझे खुशी है कि जो आउटकम निकले हैं उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमारी दोनों टीमें पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही हैं और बड़ी गति के साथ काम कर रही हैं. ये हमारे लिए गहरे संतोष का विषय है कि हमारा सहयोग निरंतर नई ऊंचाइयों को और बढ़ रहा है और दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए हम मिलकर के काम कर रहे हैं. राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखते हुए आगे बढ़ना यही हम दोनों की सोच रही है और आगे भी यही हमारा मूल मंत्र होगा. एक्सलेंसी, यूक्रेन के विषय पर हम हमेशा चर्चा करते रहे हैं. पिछली बार भी जब हम मिले थे तब आपने विस्तार से सभी विषयों के बारे में मुझे अवगत किया था. जैसा कि आप जानते हैं, भारत शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करता है और शांति के हर प्रयास के लिए आगे भी समर्थन करता रहेगा. युद्ध में बिताया एक एक दिन मानवता को पीछे धकेलता है और शांति की तरफ बढ़ाया एक एक कदम पूरी मानवता को नई आशा से भर देती है, उमंग से भर देती है. हमें एंडलेस वॉर से एंड ऑफ वॉर उसी दिशा में जाना ही होगा जो मानवता की भलाई के लिए भी बहुत आवश्यक है. जल्द से जल्द सभी विषयों का शांतिपूर्ण ढंग से समाधान हो यही मानवता की पुकार है, यही भारत का संदेश है. गांधी की धरती का, बुद्ध की धरती का एक ही संदेश है, शांति का मार्ग. आज इन सभी विषयों पर आपसे चर्चा करने का अवसर मिलेगा. कुछ दिनों बाद भारत ब्रिक्स समिट का आयोजन कर रहा है. सभी भारतवासी भारत में आपका और आपके डेलीगेशन का स्वागत करने के लिए बहुत ही उत्सुक हैं. आपकी यात्रा से हमारे द्विपक्षीय संबंधों को भी बल मिलेगा और ब्रिक्स के अंतर्गत संवाद और सहयोग भी सशक्त होगा. धन्यवाद. स्पासिबा.
0: Very significant points made by Prime Minister Narendra Modi. It's time to move from endless wars to end of war. I want to bring in India Today's Foreign Affairs Editor Geeta Mohan, my colleague Pranay Upadhyay, and India Today Group Business Editor joining us. Siddharth Zarabi also joins us on this broadcast. Geeta, significant message, a war that's been on from February 2022. Now it's almost September 2026. The Prime Minister says time to move to end of war. Geeta, you're on mute.
2: Apologies, Harith. Not the first time Prime Minister Narendra Modi has been reiterating India's position. This is a country statement that has been made and was made first time at the G20 in Indonesia, following which we've seen numerous number of times that that the Prime Minister spoke of wars and the fact that diplomacy negotiations are the only way forward. We do know that Prime Minister Modi, not just at this on this occasion, at various other occasions, has been emphasizing on the fact that countries should go back to the negotiating table, whether it's President Putin or, for that matter, President Pezeshkian. with Iran and the U.S. conflict impacting India very, very seriously, and not just India, but also global economy. Over here also, the message is very clear. It's not sustainable. It is not one which is worth the cost that the global economy is paying. And therefore, the message, again, emphatically clear that India wants wars to end and to stop. But this is, again, a historical and strategic relationship that we're talking about. The camaraderie, the hug, the body language says it all. The reason why Prime Minister Modi spoke with such comfort, even while he was talking about a very uncomfortable position that India has taken with regards to wars and Russia-Ukraine conflict.
0: Stay with me. There's more breaking news coming in. Prime Minister Narendra Modi and the Russian president traveled together in a car for the Nomad Games. And the first image just comes.